श्रीधर नोडर परिज कंपन सह बिचोड़ को बेलई मा बिचोड़ को बेलई मम झंझने बगने खारे कोलम अब तो छोरा कुदने बोलम दिन बारी खेल दो मलाई नहीं भूलो सात पारे पाची